ऐसे गिरी नी बोलो डा ओडोरी कनी इकनी आला लुबारी का इकनी डायमंड 887 FM नी दूलो नी लाख बाबी लाचा कामले सी बाती मां सोलो रोटी वा उन्हें तो वो ना फेंक बो इतु ही उन्हों लाऊं पे नी ला वो लिसन लुरी कनी डायमंड 887 FM मुकिंगी पे काले लाशाले So, eja tun kiwa loloba loloba ni joye lagba lomode oyunu ase bi wi pe e ka bo sori eto yin lale yi o gbogbo ogun folon loke orun adupe pe okun ojo sunday na la wai ari pe ninu rin ajo wa ba tin rin latojo aje kere titi di wakati ta wai